0: triste panca.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

What?

ऐसे महसूस करते हैं जैसे बेड के पर्दे पर मिकी माउस का खेल चल रहा है। परेशान नहीं होते, मिकी माउस का खेल देख मनोरंजन करते। माया के बिन बिन

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जय स्व के परिवर्तन में जय सेवा के सफलता। समझ में

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं, अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते, प्यार से याद जरूर करते हैं, रोहण भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया। जो जो संकल्प करो विदाई तो विदाई हो जाए। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगा, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार पसंद करने में आवश्यक, जिस स्वरूप में एकाग्र होने जाओ, जितना समय एकाग्र होने जाओ, ऐसे एकाग्रता संकल्प किया और पसम, इसको कहा जाता है योग। अगर निशान समाप्त मारने में फिर भी लाश तो रहते है ना, बस होने के बाद नाम निशान खत्म, तो इस वर्ष

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

से भी प्रस्तुति में।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: दादियों ने डबल विदेशों को भी मर्ज किया, डबल विदेशी उठो।

tiene Atilo. Thank you.

0: बहुत प्यारा था और डबल विदेशों का मैंने देखा उमंग उत्साह भी बहुत अच्छा था। आने से ही मेरा बाबा कह के इतने खुश होते जो मेरा कहने में मेरा हो जाते थे। उनकी शिकल, उनका उमंग बहुत अच्छा दिखाई देता था। इसलिए डबल विदेशों को हम और बाप दादा कहते थे कि डबल मधुबन का श्रृंगार। तो अभी भी डबल विदेशी जो कार्य भी मधुबन का होता है वो बहुत रुचि से करते हैं। इसलिए हमारी भी डबल विदेशों को बहुत बहुत बहुत बहुत याद प्यार देना और कहना सदा बाप में के दिल में आप हो और आपके दिल में बाप है। ये
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yeah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खांसी के लिए
2: दादी गए थे बगीचे में, दादी तीन दिन रहे उसी कारण से, और इसी का भी दादी ने दृष्टि ज्ञान दिया था।
1: गुलजार दादी गई थी इनों की उसमें, तो ये दोनों उस टाइम निकले हैं, ये दोनों युगल पर प्रसाद रेड्डी।
3: ये तो कल पहले इनों का भाग्य रहा हुआ था, कल पहले वाला भाग्य आपने अपना ले लिया। अच्छे अभी अहमदाबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अपने जी

समय पाप के संग के रंग में रहते हो ना, तो उन्होंने भी रंग तो बनाया लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो इस Peace.

Artat Buffett.

तो क्यों आप डबल पवित्र इतने महान बने हैं? क्योंकि आपको रंग कौन सा लगा? परमात्मा के संग का रंग। तो जैसे परम होली का दूसरा अर्थ है होली हो गया जो पीता सो पीता। होली तो होली करना आता है जो हो चुका वो हो चुका। होली शब्द का अर्थ क्या निकलता? पीते सो पीते। इससे
जन्म आपका सफल रहेगा। गारंटी। ऐसी होली मनाई है, होली का नाद है, जो बीता वो बीत गया होली। और तीसरे रूपरेखा क्या करते हैं, पहले जलाते हैं फिर मनाते। योगाग्नि से अपने कमजोरियों को, संस्कारों को जो अनेक जन्मों के उल्टे संस्कार है, उसको योगाग्नि से चलाया है ना, चलाया है कि अभी भी चला रही है। चलाया है जो समझते हैं हमने योग अग्नि से अपने पहले के संस्कार चलाया है, चल गए वो हाथ उठाओ, चल गए कि अभी भी आते हैं, थोड़ा थोड़ा तो आते हैं। बाप दादा के पास जब अपना चार्ट भेजते है ना, तो कहते हैं बहुत तो चले गए, चतुर है ना कहने में, कहते बहुत तो खत्म हो गए।

0: जैसे रावण को भी देखो, सिर्फ जलाया, मारा नहीं, जलाया अभी, जो बिल्कुल नाम निशान खत्म। तो आप भी सब अपने को नोट करो, संस्कारों को मारा है या जलाए बस किए, पुराने संस्कार को अगर जलाया नहीं तो बीच बीच में इमर्ज हो जाते। लेकिन भक्तों ने काफी सब
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Awesome.

वरदान से राजा

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझे आत्मा का ऐसा भी भाग्य नोता हुआ है, था और है। आत्मा का परमात्मा से मिलने का पाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, को देख दिल में अपने प्रत वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार, वाह ये बाबा के गीत ऑटोमेटिक दिल में गाते रहते हो।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Just something.

सभी ड्रिल करो, माइंड ड्रिल, घर में इंद्रियों की ड्रिल नहीं, मन की ड्रिल करो। रेडी, ड्रिल करने के लिए रेडी है, कांधे लाओ। Puppy.

Oder Decke.

ಎಲ್ಲಿ ರಚನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ?

रचना इस वृक्ष के जड़ में

बेफिक्र बादशाह।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जो सदा खुश रहती है वो हाथ उठाओ। सदा खुश खुश रहती है, खुशी तो रहती है ना, खुशी तो है ना, खुशी तो नहीं जाती, खुशी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि खुशी परमात्म गिफ्ट है। परमात्म गिफ्ट संभाल के रखनी चाहिए। बात बात में हो गई खुशी क्यों जावे, बात पावरफुल है खुशी, परमात्म गिफ्ट। तो ये भी कोशिश करो खुशी नहीं जाए। सदा फेस खुश ने मारे, खुश ने मां रह सकती है, खुशी रह सकती है, रह सकती है, कांधे लाओ, रह सकती है। अटेंशन देंगे तो हो जाएंगी ना, हो जाएंगी, हो जाएंगी, पीछे वाले, पीछे वाले हो जाएंगे। तो बाप दादा सभी के लिए कह रहे, एक मास के बाद सभी से ये चार्ट मंगाएंगे कि एक ही मास खुश रहा। आज की तारीख याद करना, सभी को कह रही है, सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं। एक मास की ट्रेल करो, कोई भी बात आवे दिल में नहीं समाना, समझना बात राइट है, रॉन्ग है, क्या करना है, लेकिन दिल में नहीं समा। दिल में समा जाती है तभी खुशी जाती। समझने वाला खुश रहेगा और बात को समझ के पूरी करेगा। एक मास का पेपर है ये, खुश रहना है। हो सकता है अलबेला बन छोड़ो, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जान इस समय आप ब्रह्मांडों के रोकने से रुका हुआ है। सुबह समय को समीप लाने वाले आप, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो, तो हो जाएंगे। रोज ये गीत याद करो, आप घर चलना है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Awesome.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अपने

있어.

0: खुशी देगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जो भी बातें ऐसी आवे जो बेकार आने नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है क्योंकि पेपर तो होना है ना, तो क्या करेंगे अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप दादा को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है ना। छोटे बन जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कोई भी चीज पसंद नहीं आती है तो क्या करते हैं, मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दे दो, फिर अगर आवे आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से भी फिर आती भी है। लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई, आपने तो दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए, आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना। जो भी आए मेरा बाबा, तो जब मेरा बाबा कहा तो और कोई मेरा है क्या, बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, देखते हैं पुरुषार्थ बहुत तरीके से करते हैं, अटेंशन भी देते हैं, एकदम ऐसे अलबेले भी नहीं है, लेकिन समय अच्छा

0: ich sonst die Arbeit zu gucken, die Attention, please. Hard subject me. Come see, come. Pass marks to energy. Number. Thora sa piche ho bada laga. Lekin attention. परिवर्तन भी है ये चीज कर अलबेलापन तो नहीं आता हो जाएंगे ये क्या बड़ी बात है इसको कहते हैं अटेंशन में अलबेलापन बाप दादा हर बच्चे के पुरुषार्थ में मेजॉरिटी खुश भी है लेकिन बीच बीच में माया भी अपना चांस ले लेती तो बाप दादा मुबारक भी देते हैं लेकिन साथ में अटेंशन का अर्थ है नो टेंशन किसी भी प्रकार का चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अटेंशन पूरा हो ऐसे नहीं सोचे ये तो थोड़ा बहुत चल जाएगा कभी एक नंबर की कमी से भी बहुत नुकसान हो जाता है इसलिए बाप दादा एक बच्चे को भी साधारण पुरुषार्थ में भी देखना नहीं चाहिए
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो शांति की धुन रहे जीवन में सदा

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब माया को चैलेंज किया तो ये समस्याएं, ये बातें, ये हालचाल माया की तो रायल रूप है। माया और तो कोई रूप में आएगी नहीं, इन रूपों में माया जीत बनना है। बात नहीं बदलेंगे, सेंटर नहीं बदलेगा, स्थान नहीं बदलेगा, आत्माएं नहीं बदलेंगी, हमें बदलना है। स्लोगन तो आपका बहुत अच्छा सबको लगता है, आप बदल के दिखाना है, बदला नहीं लेना है बदलना। पुराना स्लोगन है ये तो, नए नए रूप रायल रूप बन के माया और भी आने वाली है, घबराओ नहीं। आप अपना ध्यान रिलैक्स कर, माया ऐसे ऐसे रूप में आनी है, आ रही है, जो महसूस ही नहीं करेंगे कि ये माया है। कहेंगे नहीं दादी, आप समझती नहीं हो, ये माया नहीं है, ये तो सच्ची बात है और भी रायल रूप में आने वाली है। डरो मत, क्यों देखो, कोई भी दुश्मन चाहे हार खाता है चाहे जीत होती है, जो भी उनके पास छोटे मोटे शस्त्र अस्त्र होंगे यूज करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो माया की भी अंत तो होनी है, लेकिन जितना अंत आ रहा है समीप, उतना वो नए नए रूप से अपने अस्त्र शस्त्र यूज कर रही है, करेगी भी। फिर आपके पाँव में झुके, पहले आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, फिर खुद झुक जाएंगे। सिर्फ अपने मन में दृढ़ता लाओ, थोड़ी सी बात में संकल्प को ढीला नहीं कर दो। कोई इंसल्ट करे, कोई घृणा करे, कोई अपमान करे, निंदा करे, शुभ भावना मिट नहीं जाए। कभी भी कोई दुख दे, आप चैलेंज करते हो, हम माया को, प्रकृति को परिवर्तन करने वाले, विश्व परिवर्तक है। अपना ऑक्यूपेशन तो याद है ना, विश्व परिवर्तक तो होना। अगर कोई अपने संस्कार के वश आपको दुख भी दे, चोट लगाए, हिलाए, तो क्या आप दुख की बात को सुख में परिवर्तन नहीं कर सकते हो? इंसल्ट को सहन नहीं कर सकते हो? गाली को गुलाब नहीं बना सकते हो? समस्या को पाप सम

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सहन करने में घबराओ, क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों कर, राम बात में हम क्यों सहन करें?
3: Exactly.

0: शब्द खत्म कर दो।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

见。

So

Skill.

0: Adam. Mira para acá. Tu fiché. Hey.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: लेकिन परसेंटेज में अंतर बढ़ जाता है।

मास्टर दादा पढ़ने के बिना नहीं रहे, क्योंकि

chat to Aram.

बढ़ेंगे।

0: अपने भाई बहनों के ऊपर।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: जब भी कोई ताकत कम हो जाए ना, तो जैसे आज दिल से याद कर रहे हो ना, ऐसे याद करने से प्यार पैदा हो जाएगा। आज भी सबके दिल में कुछ

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: जो सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीन बातें याद रखो, सच्ची दिल, साफ दिल, बड़ी दिल, तीनों बातें अगर कोई भी समय दुनिया के हालतों में भी, दुनिया की हालत कैसी भी हो, लेकिन तीन ही बातें हैं तो आप सबको दाल रोटी बाप दिलाएगा। दो चार सब्जी नहीं दिलाएगा, दाल रोटी। दाल रोटी खाओ, प्रभु के को न खाओ।
1: सामग्री सब छोटी हो जाती।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कोई भी पूछे

Kissa me, bub. Damn.

Kill, kill, the yoga, wake up.

Hilken Bob. फिर भी बच्चों के ऊपर रहम दिल पर माया से किसी भी

0: हाथों से कूट देते।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आराम का अर्थ है आराम फिर करना। आराम अर्थात बाप को याद करके फिर करना। वो आराम नहीं करना धनलबन।
4: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: अगर कोई भी थोड़ी किटकिट हो तो अभी जाके पहले घर को ठीक करना, फिर विश्व की सेवा कर सके, ठीक है ना। जिन्होंने नहीं हाथ उठाया वो भी करना। शुभ भावना से जवाब नहीं देना, क्रोध नहीं करना, इससे भी फर्क पड़ जाता है। देखो यज्ञ के हिस्ट्री में ऐसे बहुत दृष्टांत है जो मारते थे, मारते हैं ना, तो बहुत मारने वाले भी माताओं की शुभ भावना से सेवा करने से वो बाप के बच्चे बन गए। तो आप भी सोचेंगे हमारे घर में लड़ाई होती है, मारते भी है, ये होता है वो होता है, लेकिन जब कोई बदल सकती है तो आप नहीं बदल सकते हो। शुभ भावना और अपने चलन परिवर्तन हो जाती है वो भी नरम हो जाते हैं, गर्म नहीं होते, नरम हो जाते। इसलिए माताएं पहले अपने घरों को, बच्चों को ठीक करो। अच्छा नहीं मानते हैं लेकिन प्यार से चले, गिलानी नहीं करे ज्ञान की, इतना तो हो सकता है ना। चलो क्रोधी है क्या भी है, आदतें खराब है, लेकिन ये तो कहे माता जी बहुत अच्छी, हम ऐसे हैं लेकिन माता जी, इतना प्रभाव तो बदले होना चाहिए ना। फिर देखो सेवा कितनी फैलती है, ठीक है माता है।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहाँ है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: लेकिन कहना अच्छा नहीं लगता है, जगदम्बा माँ लेकिन शब्द को कहती थी सिंधी में, सिंधी भाषा में।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज शिवरात्रि पर हर एक

इस बात के ऊपर अच्छा ध्यान है, क्योंकि अभी आप निमित्त बने हुए बच्चे Dang.

0: होशियार रहती बच्चों को पहुंचेगा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

रिजल्ट में।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: वो कसे भले नहीं करो, लेकिन मन में संकल्प

Chop.

Sarah.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: अच्छा, दूसरा शब्द क्या कहते हैं? मेरा स्वभाव। अभी स्वभाव शब्द कितना अच्छा है। सो सदा अच्छा होता है। मेरा स्वभाव,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आज बाप दादा व्यर्थ संकल्पों की सभापति करने के लिए सभी चारों ओर के बच्चों को हिम्मत दे रहे हैं कि अभी से व्यर्थ को सभापत कर सदा समृद्ध बन समृद्ध बनाओ। सिर्फ संदेश नहीं, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ, समृद्ध बनाओ। व्यर्थ को समापत्ति दिवस बनाओ। हो सकता है जो समझते हैं कि व्यर्थ संकल्प अपने को भी नुकसान पहुंचाती है, समय बर्बाद करती है, चेहरे पर सदा खुश नमा खुश किस्मत का अनुभव कम कराता है। इसलिए अब इस समापति का समय भी लाना है। किसको? आपको ना, जो समझते हैं कि अभी समापति के समय को समीप लाना है, उसके लिए व्यर्थ को समाप्त करना ही है, करना है नहीं, करना ही है, स्वप्न में भी नहीं है। संकल्प तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न में भी नहीं है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चे जो अपने को समझते हैं वो हाथ उठाओ। मन का हाथ उठा रहे हो ना, भाई का हाथ तो बहुत ईजी है, लेकिन मन का हाथ उठा रहे हो। जो मन का हाथ उठा रही है वो हाथ उठाओ, मन का हाथ।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम। Some

Що ти, бідо, сваробо? Парамтаме бабки сад.

0: सागर में आ जाओ।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

it.

sapevo che

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी सेवा और स्व दोनों का बैलेंस ऐसा सेवा स्थान बनाओ जो सबके आगे एक एग्जाम्पल हो। जैसे म्यूजियम होते हैं ना, तो सब एड्रेस देते हैं ना, शहर में कहाँ भी जाओ तो एड्रेस देते हैं, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ऐसे जिसको शांति चाहिए, हिम्मत चाहिए, वो मगुस्सा चाहिए, वो आपके एड्रेस में पहुंचे, फैल जावे। अगर शांति का वाइब्रेशन लेना हो तो यहाँ जाओ, अगर हिम्मत भरनी हो तो यहाँ जाओ। ऐसे स्पेशल बनाओ, ठीक है ना। बाकी तो सब म्यूजियम तो जाता, अध्यात्मक म्यूजियम भी है, भाषण भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई विशेषता ऐसी स्थान की बनाओ जो भ्रमणों में और पैर में भी ये प्रसिद्ध हो जाए कि ये चाहिए तो यहाँ जाओ। क्योंकि आजकल लोगों को सुनने की आदत तो है लेकिन अनुभव करने की आदत नहीं। तो अगर अनुभव करने जाए तो आपके पास ये प्रसिद्ध हो जाए कि अगर आपको अनुभव करना है तो ये एड्रेस।
3: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, इस वर्ष में जो इस समय तक किया उसमें संतुष्ट है। ऐसे अनुभवी परवाने तैयार कर सहयोगी बनाए है, उसकी मुबारक है और बनाओ। विशेष बाप दादा
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अच्छा मधुबन निवासी,

चाहे

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जित

gente.

チキなんだ。

Sí.

say, kami kitne bhi bache.

परिवार के प्यार।

Семь.

Sangam Yoga Pain. Unbroken.

Y

0: నిగాత్మకు.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: श्रेष्ठ रंग

Nichts.

Où t'es?

से आपको कंबाइंड

Holy Panchayat.

Hace Nyari Bormat Maki Piyari Turna Syaretena

0: vete, por favor. Puchéllate. Orcoí.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: शिव के ऊपर अक के फूली चढ़ते तो आज शिवरात्रि मना रहे हो, शिव का जन्मदिन मना रहे हो, तो ये क्रोध का अक का फूल निश्चय बुद्धि होके करो, करना ही।

हिम्मत कभी नहीं हारती।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सारे कलप में परमात्म बाप और परमात्म बच्चों का
2: जन्म भी सा

परिवर्तन का कार्य नहीं करना है, बच्चों के साथ साथ करना, ये अलौकिक साथ रहने का प्यार साथी बनने का प्यार इस संगम बड़ी अनुभव करते बाप और बच्चों का इतना गहरा प्यार जन्म भी साथ है। भी कहो अकेले या साथ में हर एक बच्चा उमंग उत्साह से कहती है कंबाइंड रहते हो ना, अकेले तो नहीं रहते हो ना, साथ जन्म है, साथ रहते हैं और आगे भी क्या वादा है।

0: कोई भी बचाओ कहाँ भी है, कैसा भी है, लेकिन साथ है और साथ ही चलने वाले।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: दृढ़ता उसको कहा जाता है, मर जाए मिट जाए लेकिन संकल्प न जाए, झुकना पड़े मरना पड़े जीते जी, अपने को मोरना पड़े सान करना पड़े सुनना पड़े लेकिन संकल्प नहीं जाए, इसको कहा जाता है दृढ़ता। कोई कितना भी हिलाए आपकी दृढ़ता को, दृढ़ता को ढीला नहीं करो, मजबूत करो, अचल बनो।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

वर्तमान समय अच्छी धूमधाम से कर रही हूँ। बाप दादा खुश है। ये 75 वर्ष की जुबली ने सभी के मेजॉरिटी मन में सेवा का उमंग लाया। बाप दादा देख कर के खुश है, सेवा की भी आवश्यकता।

सोन कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनना। तो बाप दादा सेवा को बढ़ाओ, अपने कार्य के प्रमाण जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम फिक्स किया हुआ है, ऐसे ही हर एक को अटेंशन उस हलचल में हो।

Ich wollte

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बाप दादा ने देखा कि सबसे सहज सेवा का साधन है वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन बनाना और वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना, क्योंकि वृत्ति सबसे तेज साधन जैसे साइंस वैसे आपकी रूहानी शुभ भावना शुभ कामना की वृद्धि दृष्टि और सृष्टि को बदल अपने मन

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले, संबंध संपर्क में आए, उनको ये लक्षण दिखाई दे, जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के कौन थे, कौन है वो बच्चों is

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेवा बहुत अच्छी करो, लेकिन सेवा और स्व दोनों कंबाइंड हो, जैसे बाप दादा कंबाइंड है ना, आत्मा और शरीर कंबाइंड है ना, ऐसे स्व स्थिति और सेवा दोनों कंबाइन, परसेंटेज में कोई कमी नहीं हो, कभी सेवा की परसेंटेज ज्यादा है, कभी स्व की परसेंटेज ज्यादा नहीं, बैलेंस सदा आपके बैलेंस द्वारा विश्व के आत्माओं को ब्लेसिंग मिलती रहेगी। अभी ब्लेसिंग चाहिए विश्व की आत्माओं को, मेहनत
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: हिम्मत कम तो नहीं होती, हिम्मत कम होती है तो बाप की मदद का भी अनुभव नहीं होता। बाप मदद देता है लेकिन कैच नहीं कर पाते, फायदा नहीं उठा सकते। इसीलिए सदा अपने को देखो, हिम्मत बढ़ाओ। कोई ना कोई ऐसी बुद्धि में रखो जिससे हिम्मत बढ़ती रहे। जितनी हिम्मत बढ़ेगी ना तो हिम्मत के आगे और बातें आने भी कम हो जाएंगी।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे का नहीं देखता, दूसरे को ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, ये आंखें बंद तो कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आंख दूसरा करता है ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, बाप दादा ने आज थोड़ा स्पष्ट सुना रही है, बुरा तो नहीं लगता है, बुरा लगता है नहीं। अच्छा तो एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रत समय सदा ने कभी कभी महारथियों के विशेषता को कम देखते और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते और फॉलो करते हैं, वर्णन भी करते हैं एक दो से। जब बदलेंगे ना हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों की बहुत काल का पुरुषार्थ उनको एडिशन मार्स दिला के भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को ये भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना, रिस्क करो अच्छाई की, बुराई की रीस नहीं करो, धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: एक बार बाप दादा इशारा देते कि चलते फिरते संगठन में भी रहते हो, कोई ना कोई साथ में सेवा में होता ही, तो एक दो को आत्मा के रूप में देखो। आत्मा के रूप में देखते भी है, अभ्यास भी करते हैं, लेकिन जब आत्मा देखते हो तो आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से देखते हो, या जो मिक्स संस्कार है वो भी दिखाई देते हैं। आत्मा देखो इसमें पास हो, लेकिन किस संस्कार से देखते हो? क्या आत्मा के ओरिजिनल संस्कार से कनेक्शन में आते हो कि वर्तमान संस्कार भी आते हैं सब? बाप कहते हैं कि आज से किसी को भी एक तो आत्मा रूप में देखो, लेकिन आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार उस रूप में देखो। कभी भी आपस में जो कभी कभी बातें हो जाती है वो नहीं हो। अभी आत्मा रूप में देखते हो, लेकिन जो साथ में वो भी आ जाता है वर्तमान संस्कार, वो आपस में जो संपूर्ण स्थिति होनी चाहिए उसमें दूरी पड़ जाती। तो आत्मा ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा थी। तो ये जो अभी संगठन में रुकावट आती है वो रुकावट खत्म हो जाए।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सेज को स्वयं भी मुश्किल बनाते, मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाते। जब बाप कहते हैं जो भी बोझ लगता है वो बोझ बाप को दे दो, देना नहीं आता। बोझ उठाते भी हो फिर थक भी जाते हो, फिर बाप को लेना भी देते हो। क्या करें, कैसे करें, अपने ऊपर बोझ उठाते क्यों? बाप ऑफर कर रहा है अपना सब बोझ बाप के हवाले कर, तीसरे जन्म बोझ उठाने की आदत पड़ी हुई है ना, तो आदत से मजबूर हो जाते, इसलिए मेहनत करनी पड़ती। कभी सहज कभी मुश्किल, या तो कोई भी कार्य सहज होता है या मुश्किल होता है। कभी सहज कभी मुश्किल क्यों? कोई कारण होगा ना, कारण है आदत से मजबूर हो जाते। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत करना ये सबसे बड़ी बात लगती, अच्छी नहीं लगती। मास्टर सर्वशक्तिमान और मुश्किल, टाइटल क्या देते हो अपने को? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो, हम सहज योगी नहीं है। कभी सहज योगी है कभी मुश्किल योगी। और योग है क्या? याद करना है ना बस ना, और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकता। योग लगन की अगन है, अगन कितना भी मुश्किल चीज को भी परिवर्तन कर देती। लोहा भी बोल्ट बन जाता है, ये लखन की अगन क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें, वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस पगले है, क्या करे, पुरानी हिसाब किताब है। बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते, बाप पूछते हैं आप ब्रह्मांडों ने विश्व परिवर्तन करेंगे, तो जो विश्व परिवर्तन करता है वो अपने मुश्किल को नहीं मिटा सकता।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बहुत अच्छी ड्रिल, बड़ी अच्छी लग रही है। समझ तो है, एक सेकंड में विदेही बन जाएंगे तो माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विदेही माना जैसे ज्यादा हो गया तो देख के साथ ही सुबह हो, संस्कार कमजोरियां सब देख के साथ, और देह से न्यारा हो गया सबसे न्यारा। इसलिए यह ड्रिल बहुत सहयोग देंगे। इसमें कंट्रोलिंग पावर चाहिए, मन को कंट्रोल कर सके, बुद्धि को एकाग्र कर सके, नहीं तो आदतों की तो परेशान होते रहेंगे। पहले एकाग्र करें तभी विधेय बने।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: ivar bocsánat kanó. És mi szócsdi honá? Szabszé ági ti ági nem barmili. Szabkodom miltán enyéjá. Szágádító nyájéna. Szágádító nyákényem. Rakné partí. Bábdáda uszamé. Szócsdi él. Szabó ági ági mércsé. Régen hozott egy hobbirája, horája kezé, ki picsi vállongó bábdáda, szada, nénó, mi szabája volt itt. Szabszé, szabli benne, picsi nem beti oliken. Bábdáda ki, nénó mi beti van. Nóri ratanó. Samimo Sharid piche beti lekin atma sabse samime aur bab dada to sabse zyada piche walo ko dete नजदीक वालों को इस स्टॉल नैनो से देखने का चांस है और पीछे वालों को इन नैनो से नजदीक देखने का चांस नहीं है, इसलिए बाप दादा नैनो में संभाले थे। बाप दादा मुस्कुराती रहती है तो बचता है और लाइट शुरू हो जाती है। बाप दादा समझती है कि बच्चे खड़ी खड़ी तक भी जाते हैं, लेकिन बाप दादा प्यार का सभी बच्चों को प्यार का मसाज कर लेते हैं, टांगों में मसाज हो जाते। बाप दादा का मसाज देखा है ना, बहुत न्यारा और प्यारा।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा ने देखा, मेजॉरिटी का विशेष और शरत उसके तीन

సమాచారం చేసి వచ్చానంతే బ్రహ్మాండ్ సంసారం.

profeta.

0: सुना।
1: कर कुछ नहीं सकते तो समाचार कहाँ जाएगा? पुत्री में तो गया ना, टाइम वेस्ट हुआ कि नहीं? और बाप की श्रीमत में पारम मत मिक्स क्यों की? क्योंकि बाप की आज्ञा है, सुनते हुए नहीं सुनो। तो आपने सुना क्यों? और उसकी आदत डाली, मानो एक बार आपको समाचार सुने, आपको भी बहुत अच्छा लगा। नहीं बात ऐसा भी होता है, ये पता तो पड़ गया, लेकिन एक बारी आपने उनकी बात सुनी तो दूसरी बारी वो कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा।

活動大変とガルさんでよくにとガロスのしゃいでいたくてあんめんちょうすくほびしただけにふんすたぶらあぷにあんなるびふるすたぶらOs vikri se, drishti se, samachar sunane wali, atma ke prati, sankalp girna bhavgan, itni power hai aap mein.सुनना नहीं हुआ उसका कल्याण करना लेकिन रिजल्ट में देखा जाता है मेजॉरिटी थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा होते होते Never.

Bueno, que todo está ahí. Hola.

एक से बात सुनी, आठ दस को नहीं सुनावे ये नहीं होता। अगर कोई दूर देश में भी होगा ना, तो भी उसको पत्र में भी लिख देंगे बहुत नई बात हुई है यहाँ।
That's something.

你怎么明白的？Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: देखो परिवर्तन तो होना है ना, तो प्रकृति भी अपना काम तो करेंगे ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वो अपना काम तो करेंगे ना, लेकिन हर खेल ड्रामा के खेल में ये भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना, परिस्थिति मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति को प्रभाव नहीं डाल, और जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते। तो आप सब भी मन के परेशान जाने वाले। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता है। गुजरात में आओ, अबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपने बुद्धि को मन के लाइन को क्लियर रखना। बाप दादा ने पहले भी कहा था, अनोखी वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि। क्या करना है, क्या होना है, ही सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं, आपके पाँव वहीं चलेंगे जहाँ सेफ्टी होगी, और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन असलम घर आपका है, डरना नहीं, कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, अब तो सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल है, परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना, सब में वैराग वृत्ति उत्पन्न होनी है, रहम दिल पर सब शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो, समझा।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
2: रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। रोम रोम में राम रमे थे, रामा नाम तुम्हारा। सबका रिश्ता प्रभु से जुटाना, यही था काम तुम्हारा। मन से मन की तार मिली थी, बाबा बाबा कहती, दिलाराम बाबा का दादी, दिल था धाम तुम्हारा, दिल था धाम तुम्हारा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: Yes.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सेवा तो करते हैं लेकिन सेवा में साथ साथ अपने में और साथियों में संतुष्टता, क्योंकि सेवा का फल है संतुष्टता व खुशी। तो चेक करो सेवा तो की लेकिन पहले भी सुनाया कि सेवा की खुशी तब होती है जब स्वयं साथी और वायुमंडल जन सपे संतुष्ट के वाइब्रेशन में सेवा की सफलता की तीन बातें विशेष सुनाई थी, याद होंगी। पहला नंबर सेवा अर्थात निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्मल वाणी। भाव भावना और स्वभाव सभी साथ साथ सेवा में है तो स्वयं भी संतुष्ट और साथी भी संतुष्ट, और जिनों की सेवा की वो भी आगे बढ़ते जाए। निमित्त भाव वाले भाव के तरफ संबंध जोड़ेंगे। अगर निमित्त भाव नहीं तो भाव के नजदीक इतने नहीं आए। जब भी सेवा करते हो तो ये चीज

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा, अभी सभी बच्चों को एक ही श्रेष्ठ संकल्प सुनाने चाहिए थे कि अभी स्वयं भी निर्विघ्न रहो और अपने साथियों को संबंध में आने वालों को भी निर्विघ्न बनाओ। समय
4: ऐसी

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अभी बाप दादा ने चोटरल बताई थी, याद है? पांच पांच मिनट सारे दिन में एक बार ड्रिल करनी है, वो की है जिसने वो ड्रिल की है, वो हाथ उठाओ, की है की है, दोनों ने हाथ उठाए, क्यों? तो थोड़ा टाइम की है, बहुत टाइम नहीं किया, तो अभी क्या करेंगे? कम से कम बताएं, कम से कम बताएं, आज कम से कम आठ बारी सारे दिन में कर सकते हो, कर सकते हो तो इस वर्ष का होमवर्क, इस सीजन का होमवर्क दूसरी सीजन तक कम से कम आठ बारी ये ड्रिल जरूर करनी है, जरूर। देखेंगे नहीं नहीं है, चाहे मिस हो जाए तो एक घंटे में अनेक बार करके पूरा करना, नींद पीछे करना, सोना पीछे, पहले ड्रिल आठ बारी पूरा करके पीछे सोना।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे
2: See.

Atmak bir yere.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम। सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

संकल्प में एकाग्र होकर बैठ सकते हो और कोई संकल्प नहीं हो, एक ही संकल्प।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सभी को अपना निश्चय चाहिए, कुछ भी हो जाए साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ राज में आएंगे, पक्का है ना? साथ रहेंगे ना, बाप को अकेला नहीं छोड़ के चले जाना।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: बच्चों को

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: सन

sad fuck.

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: संकल्प मेजॉरिटी, मेजॉरिटी अर्थात 90%। कई बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बाप दादा समझते हैं आज के इस बच्चे का संकल्प बहुत अच्छा है, प्रोग्रेस हो

0: चार को नहीं देखते, एक को बहुत देखते, इसीलिए दृढ़ता और एकाग्रता एकता हिल जाती। ये करी तो मैं विश्व परिवर्तन के बजाय करो विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन। तुझे परिवर्तन से स्व परिवर्तन बदली करे, बदली करे, नहीं करे रिजल्ट देखेंगे फिर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जब बाप ने हाजी किया तो बच्चों को भी हाजी करना चाहिए ना। कुछ भी हो जाए बाप दादा तो कहते हैं स्व से मरना है। मैं राइट हूं, मैं ये हूं, मैं क्या कम हूं, मैं भी सब कुछ हूं, ये मैं बन से मरना है। तो मरना भी इस जन्म राज भाग्य में जीना है। मंसूर है, मंसूर है टीचर्स, तो बाप दादा यही देखने चाहिए थे।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छे को

0: अवश्यमे विश्वराज अधिकारी और द्वापर से कलयुग अंत तक पूछे पूजन के अधिकारी
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: दी सौगात कोई वापस लेते हैं क्या? कई बच्चे कहते हैं बाबा हम चाहते नहीं है, लेकिन आ जाती। कारण क्या? कारण अगर पूछे तो जवाब बहुत अच्छा देते हैं। कहते हैं जानते भी है, मानते भी है, लेकिन क्या करे वापस आ जाते। सोचो दी हुई चीज अगर आपके पास आ जाए तो क्या दी हुई चीज अपने पास रखेंगे? तो अगर आपने दिल से दी, अगर वापस आ भी जाती तो रखेंगे अपने पास? कारण क्या है? से प्यार है ना, तो प्यार के कारण जो बाप कहते हैं वो करने चाहते हैं। ये बाप के पास भी रिजल्ट आती है, लेकिन क्या है लाना। ये अटेंशन कम है, दृढ़ता सफलता की चाबी। आज क्या करेंगे? संकल्प करेंगे या दृढ़ संकल्प करेंगे? अगर आपका दृढ़ संकल्प है तो उसकी निशानी है दृढ़ता सफलता की चाबी। तो चाबी लगाने में कोई कमी रह जाती है, इसीलिए संपूर्ण सफलता नहीं मिलती।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Yeah.

giorni mi Peace.

し。

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: सक्सेसफुल कभी भी क्यों नहीं होते, उसका कारण क्या है? वैसे सफलता आप सबका जन्म सिद्ध अधिकार कहते हो ना? कहते हो के मानते भी हो? सिर्फ कहते हो या मानते हो? क्या मानते हैं? तो क्यों नहीं सफलता होती? कारण क्या? जब अपना जन्म सिद्ध अधिकार है ना, अधिकार है शक्तियां पीछे वाली सुना अधिकार है

0: सोर का लाभ पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं होगा या नहीं, तुझे अपना ही कमजोर पर्सन जितने लेकिन पर्सन होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं, ये संकल्प दीवार बन जाते और सफलता उस दीवार के अंदर विजय। ये आपका स्लोगन है, दस बार का है, पक्का है, पक्का सभी का। जब ये अभी का स्लोगन है, आवश्यक नहीं है वर्तमान तो सदा क्या रहना चाहिए, पर्सन चित्त या पर्सन चित्त तो माया अपन नहीं संकल्प की चार बिछा लेती और अपने जाल में फंस जाते। विजय है इससे इस सच कमजोर चाल को समाप्त करो। फसो लेकिन समाप्त करो है शक्ति है समाप्त करने की। धीरे धीरे नहीं करो, फट से सेकंड में इस जान को पढ़ने नहीं दो। अगर एक बार भी इस जान में फंस गए ना तो निकलना बहुत मुश्किल। विजय मेरा बर्थ राइट है, सफलता मेरा बर्थ राइट है। ये बर्थ राइट परमात्म बर्थ राइट है, इसको कोई नहीं सकता। ऐसा निश्चय बुद्धि सदा प्रसन्न चित्त सहज और सुधै रहेगा। मेहनत करने की भी जरूरत।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Yeah.

morire di dovrei svolgerte se ne si va a mutti visire gli è stata la c'è lec ciò si va a coalgermi lei ma non c'è nulla e si va o man si va che tu accegli lecen trama non sa di assolutezza ma non sa naimla ora abchi avasta tu srughi si va che ne अपने बिगड़ावट में आ जाए तो वो सेवा क्या उस सेवा का प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा ऐसी सेवा का सच्ची सेवा सभी के दुआओं से सिवा उसका प्रत्यक्ष फल खुशी होगी और अगर सेवा में फीलिंग आ गई तो फीलिंग को बताया क्या कहते हैं यहाँ क्या कहते हैं ब्रह्मा

स्वरूप हो, सच्ची सेवादारी हो, स्वार्थी सेवा नहीं, एक होता है कल्याण की भावना की सेवा और दूसरी होती है स्वार्थ से मेरा नाम आ जाएगा, मेरा फोटो आ जाएगा अखबार में, मेरा टीवी में आ जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, कई साधन ब्राह्मणों में नाम हो जाएगा, ब्राह्मण ही बहुत आगे रखेंगे पूछेंगे, ये सब भाव स्वार्थी सेवा की नहीं, जो सच्चा सेवादारी है। आजकल के हिसाब से शुरू की स्थापना के बाद दूसरी थी, लेकिन इस समय के प्रत्यक्षता के हिसाब से अभी सेवा आपके पास आएगी, आप सेवा के बिचारी नहीं, आपके पास सेवा को तो जल के आएगी, सेवादारी को चलो और कोई से

मुझे चांस मिले मेरे को मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता, मिलना चाहिए। ये ऐसी संकल्प स्वार्थ कहा जाए, ब्राह्मण परिवार में आपका नाम नामी ग्रामी नहीं, सेवादारी हो अच्छी लेकिन नाम नहीं है आपका, लेकिन बाप के पास तो नाम है ना, जब बाप के दिल पर नाम है तो और क्या चाहिए, और सिर्फ बाप के दिल पर नहीं, लेकिन जब फाइनल में नंबर मिलेंगे तो आपके नंबर आ गए, क्यों कि बाप दादा ये नहीं देखता, हिसाब रखते हैं, चांस नहीं मिला आप राइट हो, लेकिन आपको चांस नहीं मिला तो वो भी नोट होता है, और मांग के चांस लिया वो किया तो सही, लेकिन वो भी मार्क्स कट होते, ये धर्म राज का खाता कोई कम नहीं, बहुत सुख।

और दूसरा समझते।

उसको देते हो तो भी आपका शेयर उसमें जमा है, चाहे आपने नहीं किया लेकिन दिया किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा हुआ, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे लंबे नहीं चलो, ठीक है हो गया दिन बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब कच्चा।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

if

Skelett.

Apísame.

Catching power. Catching power. बहुत आवश्यक होगी। ऐसा समय आएगा जो ये साधन कुछ

अपने में चेक।

Bit.

обязанен. Сказать да нет.

रिहर्सल बढ़ती जाएंगे। और

Sarah.

उसे अतक

0: Shabakarnika. Parivartan. Karnika. Or attention.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: Suck।

0: टेस्ट को खत्म कर पेस्ट का प्रभाव वायुमंडल में फैले, वेस्ट अभी भी है, इसलिए मनसा द्वारा सेवा का
1: रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: आज चारों की सर्वश्रेष्ठ See.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: कुछ भी हो जाए, क्या भी परिस्थिति हो जाए, परिस्थिति आएगी, माया सुन रही है ना, तो माया अपना रूप तो दिखाएगी, लेकिन माया का काम है आना और आपका काम है विजय पाना। ये नहीं कहना ये हो गया वो हो गया, ये नहीं करना। आएगा होगा, ये तो बाप दादा पहले ही सुन,
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी समय है। சாரு பராசத்து அபி சான்ஸ் ஃபிர் சான்ஸ் பி கதம் ஜாயே கசானா பராய் லேக்கன் பரா நீ சகே.
3: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा का बॉम्बे और दिल्ली दोनों तरफ एक बात का उमंग उत्साह है, ऐसा सर्विस तो करते हो वो तो कहने की बात नहीं, अच्छी कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन ऐसे कोई ग्रुप निकालो, क्योंकि लिस्ट सभी वर्गों ने मेजॉरिटी बाप दादा को भेजी थी। देखिए वो लिस्ट अच्छी अच्छी है, लिस्ट में जो नाम पाला कर सकते।
2: शरारत करके और लोग

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: खुशी में नाचते भी रहता और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना, साथ में जो भी सम्मान संपर्क में आए उसको कोई न कोई गिफ्ट देना, कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट स्टॉक है। तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जान फ्राक दिल बनना, किसी को शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो, किसको कोई कौन का गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपन ने चेहरे और चलन से। और किसको चलो कोई कोई इमर्ज नहीं भी हो, शक्ति इमर्ज नहीं भी हो, तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। वो कौन सी शुभ भावना और शुभ कामना है? शुभ कामना करो कि ये मेरा सिखिलता भाई या बहन सिखिलता सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाए। इस भाई बहन का भी मूर्ति कला का हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वो लेते नहीं, अच्छा शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना, चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन? आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो, सभी विश्व परिवर्तक है। धंधा आपका क्या है? विश्व परिवर्तक है ना, तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टा चलन दिखाई, उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो, नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे। विश्व परिवर्तक है, वो प्रैक्टिकल में यूज होता जाएगा और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बारी बैठेगा लेकिन हर जन्म में राज परिवार राज अधिकारी आत्माओं के सभी संबंध में हो विश्व परिवर्तक विश्व राज अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन, देते चलो तभी भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज में हर आत्मा भरपूर रहेगी। समय की सो बनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। अगर आप जो भी सामने आवे मुख से ऐसे शब्द बोलो संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वो हर समय दिल से मुबारक कहो या दुआएं कहो वो अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोल बोलो ऐसा समान संपर्क में आओ जो दिल से मौका से मुबारक निकले वह दुआएं निकले। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो साधारण बोल नहीं।
2: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: See you.

Yeah.

です。

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आश रही हुई है, पता है कौन सी आश है? वो जान तो गई हो, जान गए हो ना टीचर्स, जान गए हो ना। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हो, बाप दादा पुरुषार्थ देख करके खुश कराते हैं, लेकिन एक आश ये के पुरुषार्थ में अभी दीवार गति चाहिए। पुरुषार्थ है लेकिन अभी दीवार गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बनो, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व के निवारण कर सभी को मेजॉरिटी आत्माओं को निर्वाण धाम में भेजना है। जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तब विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकेंगे। अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती है, तो बाप द्वारा विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त है, किसी भी प्रकार की समस्या का कारण नहीं आगे। ये कारण है। इसको समाप्त कर। हर एक समझे मुझे करना है। टीचर समझे मुझे करना है। स्टूडेंट समझे मुझे करना है। प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है। मधुबन वाले समझे हमें करना है। मैं मधुबन वाले है ना, करना है ना, ये हाँ नहीं करता, करना है। समस्या को समाप्त, शब्द को ही समाप्त हो जाए, कारण खत्म हो के निवारण आ जाए। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे के कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बनना ही है, कुछ भी हो। सहन करना पड़े, सामना करना पड़े माया को। एक तो के समान संपर्क में सहन भी करना पड़े। मुझे समस्या नहीं।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: कभी भी आप सभी का चेहरा ज्यादा गंभीर नहीं होना चाहिए। टू मच गंभीर भी अच्छा नहीं लगता। मुस्कुराहट तो होनी चाहिए। सीरियस नहीं चेहरा करना। क्या करे कैसे करे तो सीरियस हो जाते हो। बहुत मेहनत है, बहुत काम है, सीरियस हो जाते हो। लेकिन जितना बहुत काम उतना ज्यादा है मुस्कुराना। मुस्कुराना आता है ना, आता है। चलचित्र देखो, कभी ऐसे सीरियस दिखाते हैं क्या? अगर सीरियस दिखावे ना तो कहते हैं आर्टिस्ट ठीक नहीं है। अगर आप भी सीरियस रहते हो ना तो कहेंगे इसको इसलिए।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: कई बार कहते हैं बाबा, आज वो चैन बाबा भूल गए। बाप दादा सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा, भूल गए। 63 जन्म भूले, अभी भी भूल गए। एक जन्म और छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए, अभी भी भूलना रहा हुए। इसीलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया को कभी कभी खातरी भी कर देते, कहते हैं हम समय पर हो जाएंगे ध्यान, अभी तो टाइम पड़ा है ना, थोड़ा अभी टॉयलेट का बोर्ड नहीं लगा है ना, हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके खातरी चाय पानी पीती रहती। माया के फॉलो फादर के बजाय फॉलो माया कर लेते। पुरुषार्थ ये ना संपूर्ण थोड़े बने हैं, ये तो होता ही है ना, ये माया कोई फॉलोवर बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी बाप दादा चक्कर लगाने आते हैं तो सदा शिकल देखे, तो कैसी शिकल देखे। कभी कभी शिकल अच्छी नहीं होती, सोच में सोच बहुत करते, क्या करूं ये करूं नहीं करूं, फायदा होगा ठीक होगा, सोचते बहुत। बाप को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज्यादा सोचते क्यों, सिर्फ फॉलो फादर। व्यर्थ संकल्प आती है, लहर आ जाती है, तो बैठ जाओ। फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे हैं, सबको सुना रहे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद। शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: be Mars. Cut. ये धर्म राजकुल खाता कोई कम नहीं, बहुत सूक्ष्म हिसाब किताब, इसीलिए है निर्स्वार्थ सेवादारी, अपना स्वार्थ समझते हैं कि हमको भी मिले तो बहुत अच्छा और योग्य भी है। अगर मानो आप अपना चांस उसको देते हो तो भी आपका शेयर चाहे आपने नहीं किया, लेकिन दिया किसको चांस, तो उसमें भी आपका शेयर जमा होगा, क्योंकि सच्चा डायमंड बनाना है ना, तो हिसाब किताब भी समझ लो, ऐसे अलग मिले नहीं चल।
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: वर्तमान समय समीप आने के कारण बाप दादा अभी यही शरण दे रही है कि समय के समीप Son.

0: नहीं हो, मैं भी सब जानता हूं। ये मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचे ये मेरे पन का अपमान का संकल्प, ये भी सुख्यम अपवित्रता का अंश। तो अपने को चेक करो, किसी भी प्रकार का अपवित्रता के व्यर्थ संकल्प का कोई अंश तो नहीं रह गए, क्योंकि अभी पवित्र दुनिया के स्थापना का समय समीप लाने वाले आप परमात्म प्यारे बच्चे निमित्त हो, तो जो निमित्त आत्माए हैं उन्हों का वाइब्रेशन चारों ओर फैलता है। तो चेक करो, किसी भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प भी अपने तरफ खींचता तो नहीं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: Bye.
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आगे के लिए अब दीवार पुरशारत कर, आगे से भी आगे जाने का दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी तो बाप दादा जो भी आज बचे आए हैं वो लोगों विशेष दृढ़ता की चाबी की So

0: आज आगे बढ़ाते हैं।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

嫁妆废了，嫁吧。Fellas.

szarabka. Én marcskarom. Körnej felő. Szakás felő. Csészé.

sick.

0: होनी चाहिए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: हाथ तो बहुत सहज उठाते हैं बाबा को पता है, हाथ तो ट्वेल के तो बहुत प्रकार के हाथ उठेंगे, लेकिन फिर भी बाप दादा कहते हैं जिस चीकिंग से आप हाथ उठाने के लिए तैयार है, बाप दादा को पता है कितने तैयार है कौन तैयार है अभी भी और अंतर्मुखी सूक्ष्म चेकिंग करो। अच्छा कोई को दुख नहीं दिया, लेकिन जितना सुख का खाता जमा होना चाहिए उतना हुआ, नाराज नहीं किया, राशि किया, व्यर्थ नहीं सोचा, लेकिन श्रेष्ठ संकल्प व्यर्थ की जगह पर श्रेष्ठ संकल्प इतने ही जमा हुआ, सबके प्रति शुभ भावना रखी, लेकिन शुभ भावना का रिस्पॉन्स मिला वो चाहे बदले नहीं बदले, लेकिन आप उससे संतुष्ट रहे, ऐसी सूक्ष्म चेकिंग फिर भी अपने आप को करो। और अगर ऐसी सूक्ष्म चेकिंग में पास हो बहुत अच्छे।
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम,
2: सत्यम शिवम

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: सेकंड में पहुंचा सकते हैं। आपका शुभ श्रेष्ठ संकल्प उसके आगे ये रॉकेट के रिफाइन
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम करते हो उसमें संदेश तो मिलता है, अनुभव करके जाए कुछ
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत और कब मेहनत मुक्त बनेंगे, ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते। जिम्मेवारी बाप को दे दो।

dulce.

0: आज के दिन को भी याद करने से सने के आगे मेहनत समाप्त हो जाए।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
2: सत्यम शिवम सुंदरम,
3: सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: अभी वर्तमान समय के हिसाब से मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास जो कार्य कर रहे हो उससे Oh, shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: चौरासिया जन्म

0: Mequina. Saca a roupa, Mequina. Esse. Genone number one me ha tutaya. TV me nikalata. Nikalayana. Bap tata unka file dekhenge. File to hai na bap tata ke paas.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना, कोई कैसा भी हो, लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मक रूप में देखना व फरिश्ता रूप में देखना, वृत्ति दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में, तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना और सुख लेना, ये है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति दृष्टि और कृति तीनों में ये धारणा हो, कोई क्या भी करता है दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर रहना। तो ब्रह्मा बाप ने सुख दिया, सुख दिया ना, तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्रह्मात्माओं को क्या करना है?
0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: बाप दादा ने आज अमृत वेले चक्कर लगाए, सभी

Liberty.

सबसे बड़े थे बड़ी, स्मृति स्वरूप रहना इसको।

मशरूम की स्मृति रखते हैं।

0: इसकी और आवश्यकता क्योंकि अनुभव कभी भी भूलता नहीं किसी इस स्वरूप की अनुभूति में खोजे अनुभव अपने पुरुषार्थ में भी बहुत मदद करते हैं। तो बाप दादा ने देखा अनुभव की अथॉरिटी इस अनुभव के अथॉरिटी का अभ्यास के ऊपर और अटेंशन दो अनुभव स्वरूप स्थिति सदा समाई हुई रहती है उसकी शिकिल चलन सेवा कर
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: Itch.

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।
2: सत्यम शिवम सुंदरम।
3: आप सबकी दादी निमित बने ना, कोई कहे ना कहे, लेकिन निमित पालना के ऑटोमेटिक याद निकल, जैसे दादी ने बाप दादा की तो बात शुरू, लेकिन दादी तो आप जैसे ही थी, लेकिन करके दिखे सबसे बड़ा पेपर दादी ने अव्यक्त पाप होने की टाइम दिया। ऐसे वायुमंडल अचानक और इतनी हिम्मत रखना और सभी को मददगार बनाना, ये तो कमाल की। भले साथ दिया लेकिन निमित तो बने। दादी की विशेषता क्या रही? दिल साफ, मुराद हासिल, किसी की भी बात दिल में नहीं रही। उसको उमंग दिलाया, अलबेला है छोड़ दो नहीं, हिम्मत दिलाई। वो सभी के दिल से निकलता है मेरी दादी।
4: भाइयों को बुलाया,
3: दिल से कहते हैं ना सभी मेरी दादी। इसलिए आप लोग भी ग्रुप बनाओ, जो लक्ष्य रखे दादी चलो बाप समान तो बनना ही है, लेकिन कम से कम दादी के समान पास ना दे। ग्रुप चाहिए एक, एक दो के साथी बन, ऐसा वर्तक के स्वरूप देख, फिर बाप दादा उस ग्रुप को विशेष गिफ्ट देंगे।
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

This is so...

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे
0: सुनते रहिए शिवा रेडियो,
1: यहाँ है खुशियों का संगम।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: ये मिलन विचित्र है, सब रिस्पांस में है।

是多累，我都阿比。

सभी बच्चों को।

Chris.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

said it.

आजकल के हिसाब से सुनने सुनाने की शक्ति के बजाय फिरती द्वारा

Monster-Schirm.

जुदा ना थे न जुदा रहेंगे, विदा न होंगे न विदा कहेंगे। धरती गगन हो, मधुबन वतन हो, बाबा दादी संग सदा रहेंगे, बाबा दादी संग सदा रहेंगे। याद में बाबा के सदा मगन, ओ दादी आपका यही कथन, ओ दादी आपका यही कथन।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: ऐसे ही भारत में भी, विदेश में भी, कोई भी चाहे शाखाएं है, लेकिन संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। चाहो सेवा करने, लेकिन कर भी नहीं पाओ, ऐसा समय भी आने वाले। इसलिए जो करना है वो अब करो, कब नहीं। क्योंकि समय पांचों

Shut up.

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: बाबा बाहर बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हैं, प्रकाश स्तंभ पर बैठे
2: जी। बच्ची को चक्कर लगाए तो कहाँ कहाँ रही है, लेकिन बाप दादा उन्हों Yeah.

What's up? Good night.

shit.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

bolsa, sim.

उसने गलती की, लेकिन आपने जो फोर्स दिखाया, क्या वो गलती नहीं है? उसने आजकल

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम।

जैसे

llamarte Supply Sir.

чамак. Жуани жайлити. Пюрити ки чамак нери. Of them.

स्वरूप की राय

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।
1: बाप दादा, ऐसे बच्चे भी देख रही है, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन दीवार पुरुषार्थ की लहर सदा अपने

0: कुशारत हीन के वायुमंडल में नहीं आकर ओडो को भी शरत पे तीवर रहने वाले औरों को भी पुरशरत पे आगे बढ़ाओ, जो सभी पुरशरत के उमंग उत्साह से पढ़ते भी चले पढ़ाते भी चले क्योंकि एक दो के सबके प्रत शुभ भावना के आधार से बढ़ाते चलो, उमंग होला
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, सत्यम शिवम सुंदरम।

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।
1: अच्छा को

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: अभी बात

见。

सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

0: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।
1: आजकल के लोग एक तरफ बड़ी

Yeah.

सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।

0: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो,
1: सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम।
2: बिजनेस वाले हाथ उठाओ, ये सब बिजनेस। बिजनेस वाले क्या सोचते हैं, खास साहब को चांस मिला है। बिजनेस वालों को बाप से भी बिजनेस कराओ, श्रम खुद किया वो तो अच्छा किया, लेकिन औरों को भी बाप से बिजनेस कराओ, क्योंकि आजकल सर्व बिजनेस मैन टेंशन में बहुत है। बिजनेस समय अनुसार नीचे जा रहा है, इसलिए जितना भी पैसा है, पैसे के साथ चिंता है क्या होगा, तो उन्हों को चिंता से हटाए अपनी राशि खजाने। मैं तो सुनाऊं, जितने भी बिजनेसमैन आए हैं, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा है, लेकिन अपने हमजंस कार्य करने वालों को खुशी का रास्ता बताओ। जो भी आप बिजनेसमैन आए हैं, उन्हों को चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, है चिंता? हाँ नहीं है तो हाथ उठाओ। अच्छा नहीं है चिंता, कल कुछ हो जाए तो बेफिक्र बात है। बिजनेस मैन बेफिक्र बात है। दोनों ने हाथ उठाया। अच्छा नहीं, अभी आप